0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend. Yeah.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Yo!

0: करना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.
7: भूख लगी, जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: स्वागत स्वागत स्वागत आप सभी ख्वातीनों हजरात का दिल से स्वागत करता हूं। मैं समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती पर। और मैं एक बार फिर से लौट आया हूं बॉलीवुड की दुनिया से एक बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कहानी लेकर। एक ऐसा डायरेक्टर, एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसे मसाला फिल्मों का बादशाह कहा गया, जिसने खुद को मुकद्दर का सिकंदर बनाया।
1: पहले सिकंदर से बच जा, फिर जेडी की सोचना।
0: जिसने बॉलीवुड को दिया एक नायाब चेहरा जिसे हम एंग्री यंग मैन कहते हैं।
2: अरे भीड़, अब उन कुत्ते की वो दुम है जो 12 बरस नली में डाल के रखो, नली टेढ़ी हो जाएगी, अपुन सीधा नहीं होगा। तुम साला क्या अपुन को सीधा करेगा है?
0: जी हाँ, सिंगापुर, मैं बात कर रहा हूँ उस डायरेक्टर की जो न सिर्फ खुद लेजेंड है बल्कि एक लेजेंड मेकर भी है, जिसने लोगों को लेजेंड बनाया है। हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर फाइनेस्ट डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की।

तो आज के शो के लेजेंड यही होंगे, प्रकाश मेहरा, जिनके खुद की लाइफ किसी फिल्मी जिंदगी से कम नहीं है। तो इनकी बात करने से पहले हम सुन लेते हैं इन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे इनकी कहानी शुरू से। आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती पर, लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: Some stories are easy to tell, par kuch kahaniyan dil ke andar hi reh jati hain. एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.
2: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप हैं, समर के साथ सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से. एक बार फिर से आपका स्वागत. और आज हमारे मेहमान कलाकार यानी लेजेंड हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ में बेहतरीन लिरिसिस्ट, और वो हैं प्रकाश मेहरा साहब. मेहरा साहब को अगर आप जानते होंगे तो एज ए डायरेक्टर ही जानते होंगे, लेकिन वो गजब के गीतकार भी हैं और उनकी फिल्मों में बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे भी हैं, जिनकी बात मैं करूंगा. दरअसल वो बनना तो गीतकार ही चाहते थे, लेकिन जब प्रोडक्शन मैनेजर वो बन गए तो फिर इन्होंने डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाने की सोची और डायरेक्टर बन भी गए. हिंदी फिल्मों के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक बन गए साहब, वही डायरेक्टर नहीं. लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसके लिए इनके बचपन से शुरू करते हैं. तो 13 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इनका जन्म हुआ. इनके परिवार का कोई भी फिल्मों से ताल्लुक नहीं था, दूर दूर तक भी. फिल्मों का शौक खुद इन्हें लगा और बचपन से लिखने का शौक था, इसलिए गीतकार बनने के लिए ये मुंबई आ गए. स्कूलिंग करने के बाद जब ये छोटे ही थे तब इनके पिता साधु बन गए थे, यानी वो अध्यात्म की राह पर चले गए थे. तो इन्होंने अपने पिता के लिए ये इमोशन अपनी फिल्म जादूगर में दिखाया था, अगर आपने देखी होगी तो, जिसमें आदित्य पंचोली के पिता यानी अमरीश पुरी जादूगर बनते हैं. प्रकाश मेहरा की बात करते हैं तो खैर, जब वो मुंबई आए 1950 में तो ये एक प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन कंट्रोलर बन गए. काफी सालों तक यही काम करते रहे, लेकिन इस दरमियान ये डायरेक्शन सीखते रहे, क्योंकि अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का इन्हें मौका मिला. तो लगभग 15 साल तक प्रोडक्शन कंट्रोलर बनने के बाद इन्होंने 1968 में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की. डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब का प्रोडक्शन था ये, और शशि कपूर और बबीता इस फिल्म के लीड रोल में थे, और फिल्म का नाम था हसीना मान जाएगी. जी हाँ, पहली हसीना मान जाएगी.

वेल, सिंगापुर इस फिल्म के कुछ मजेदार किस्से हैं, इनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए प्रकाश मेहरा स्पेशल लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: आमिर खान wondered.
2: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
1: सलमान खान wanted answers.
3: कैसे किया ये?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
9: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं समर की जुबानी प्रकाश मेहरा की कहानी लेजेंड्स फिर से में। और ब्रेक से पहले मैंने बात की थी प्रकाश मेहरा साहब की डायरेक्टेड पहली फिल्म 1968 में जो आई थी हसीना मान जाएगी की। इस फिल्म का म्यूजिक बड़ा कमाल का था साहब, सारे के सारे गाने हिट हुए। कल्याण जी आनंद जी ने इसका म्यूजिक दिया और 3 गाने कमर जलालाबादी ने लिखे, 1 गाना अख्तर रोमानी ने, और जैसा कि मैं बोल रहा था मेहरा साहब ने भी गाना लिखा। भाई वो तो गाना लिखने आए थे, कमाल का लिखते हैं वो। तो इस फिल्म में 2 गाने प्रकाश मेहरा साहब ने भी लिखे, जिसमें 1 गाना तो आए हाय साहब कमाल था। कौन सा? ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अच्छा मैं शायद सही से गा नहीं रहा हूं।

0: सनम हम गम तेरे।
1: और इस फिल्म के बाद प्रकाश मेहरा साहब की लगभग हर फिल्म में इन्होंने ही म्यूजिक दिया। किन्होंने? कल्याण जी आनंद जी ने। प्रकाश मेहरा साहब की बहुत सी फिल्में कादर खान साहब ने लिखी और वो फिल्मों में एक्ट भी करते रहे। और मेहरा साहब की पहली मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी, यानी फिल्म हसीना मान जाएगी के सेट पर। हुआ यूं था कि फिल्म की शूटिंग सिद्दीक नाम की कॉलेज में चल रही थी और यहीं इसी कॉलेज में कादर खान साहब पढ़ा रहे थे। सिंगापुर कादर खान फिल्मों में आने से पहले कॉलेज में पढ़ाने का काम किया करते थे, यानी ये इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो फिल्म के कुछ डायलॉग्स जो उस समय वहां बोले जा रहे थे उनसे खुद मेहरा साहब खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने कादर खान साहब को बुलाया जो पढ़ा रहे थे और कहा कि सर क्या आप इन डायलॉग्स को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से लिख सकते हैं। तो कादर खान साहब ने उन डायलॉग्स को चेंज करके और लिख दिया साहब। कमाल की बात ये हुई कि मेहरा साहब को ये सब डायलॉग्स बहुत पसंद आए जो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में थे। हालांकि इससे पहले कादर खान साहब ने किसी फिल्म में कोई काम नहीं किया था। तो साहब यहीं से इन दोनों की दोस्ती हो गई जो हमेशा बनी रही। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म से जुड़ी हुई। ये फिल्म मेहरा साहब की पहली फिल्म थी जो उन्होंने बबीता के साथ बनाई, और उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म जो डायरेक्ट की थी बाल ब्रह्मचारी, ये उन्होंने बबीता की बेटी यानी करिश्मा कपूर के साथ बनाई थी। वेल, किससे अभी और भी बाकी हैं और फिल्में भी बहुत सारी बाकी है मेहरा साहब की। तो फिलहाल आप सुनिए ये गाने, तब तक के लिए मुझे दीजिए एक छोटे से ब्रेक की इजाजत। इस ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुखातिब होता हूँ प्रकाश मेहरा साहब की आगे की कहानी लेकर। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ, और ये है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती। और इस रेडियो मस्ती पर मैं प्रकाश मेहरा साहब की कहानी आपको सुना रहा हूँ। पहली फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट हो गई साहब। इसके बाद 3 साल बाद उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई जिसका नाम था मेला। इस फिल्म में रियल लाइफ के दो भाई यानी संजय खान और फिरोज खान लीड रोल में थे, और साथ में उनके थी महकती मदमाती मुमताज।

ये फिल्म ज्यादा बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन फ्लॉप भी नहीं कही जा सकती। इसके बाद इनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र से। हुआ यूं कि राइटर सलीम जावेद ने एक फिल्म लिखी थी जिसका नाम था जंजीर। ये फिल्म धर्मेंद्र साहब ने खरीद ली थी और धर्मेंद्र ने ये फिल्म प्रकाश मेहरा को सुनाई। उन्हें ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। इसी दौरान प्रकाश मेहरा एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे जिसका नाम था समाधि। तो जब धर्मेंद्र ने इस फिल्म की स्टोरी सुनी तो उन्होंने मेहरा साहब से कहा कि आप जंजीर से पहले ये फिल्म बनाइए। मेहरा साहब ने कहा ठीक है, लेकिन अब तुम्हें जंजीर में एक्टिंग के अलावा को प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। धर्मेंद्र ने हाँ कह दिया। तो इस तरह जंजीर से पहले धर्मेंद्र के साथ इन्होंने समाधि बनाई जो सुपरहिट रही। और ये दौर धर्मेंद्र का गोल्डन दौर भी था, गोल्डन टाइम चल रहा था उनका। फिल्म का एक गाना तो क्लासिक हिट हो गया, आज भी हिट है, उसकी रिमिक्सेस भी बने और वो गाना है

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

वेलकम बैक रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं प्रकाश मेहरा स्पेशल शो मेरे यानी समर के साथ। बात करने वाले थे हम फिल्म जंजीर की। तो जैसा कि मैंने कहा था कि धर्मेंद्र ने ये फिल्म सलीम जावेद से खरीद ली थी और फिर धर्मेंद्र ने ये फिल्म प्रकाश मेहरा साहब को सुनाई, लेकिन फिल्म समाधि के चक्कर में ये फिल्म डिले हो गई। इसके बाद जब जंजीर की शूटिंग शुरू होने वाली थी धर्मेंद्र के साथ, ऑफकोर्स क्योंकि वो राइट्स उनके पास थे और को प्रोड्यूसर भी वो होने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र ने मेहरा साहब से कहा कि यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ मेरे भाई के साथ, तो उसकी शूटिंग जब आधी हो जाएगी तब मैं ये फिल्म शुरू करूंगा। अब मेहरा साहब ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे और वो भी धर्मेंद्र के साथ, क्योंकि धर्मेंद्र उस वक्त के टॉप एक्टर थे, लेकिन एंड में धर्मेंद्र ने मना ही कर दिया फिल्म करने के लिए। तो इसके बाद मेहरा साहब देवानंद जी के पास गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ये कहकर के इसमें गाने नहीं है यार, है ये कैसी फिल्म है, अगर तुम गाने डालोगे तो मैं फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हो नहीं सका साहब, क्योंकि डायरेक्टर ने जो स्टोरी कंसीव की थी उसमें गाना था ही नहीं, मतलब इतने गानों की डिमांड नहीं थी इस फिल्म में। अब देव साहब चाहते थे कि एक रोमांटिक गाना उन पर पिक्चराइज किया जाए, लेकिन इस फिल्म का जो हीरो है, जो कैरेक्टर है, वो रोमांटिक है ही नहीं साहब, तो उस पर ये गाना कैसे पिक्चराइज किया जाएगा, इसलिए वहां से भी एक तरह से मना हो गया। फिर इसके बाद राजकुमार साहब के पास गए प्रकाश मेहरा साहब, उन्होंने हाँ कह दिया, लेकिन दरअसल वो एक फिल्म शूट कर रहे थे जो उस वक्त चेन्नई में शूट हो रही थी। तो राजकुमार साहब ने कहा कि अगर तुम ये फिल्म चेन्नई में शूट करो तो मैं कर सकता हूँ, फिल्म की स्टोरी भी अच्छी है। लेकिन मेहरा साहब ने कहा कि सर स्टोरी मुंबई की है तो मुझे इसे मुंबई में शूट करना पड़ेगा। तो फिर इस तरह राजकुमार साहब भी नहीं कर पाए फिल्म, हालांकि फिल्म की एक बड़ी कास्ट ये ले चुके थे और वो थे प्राण साहब। तो प्राण साहब ने मेहरा साहब से क्या कहा ये बताऊंगा मैं इस ब्रेक के बाद। तब तक इस ब्रेक में आप सुनिए मेहरा साहब की फिल्मों के ये जबरदस्त गाने। मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मस्ती पर। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग, अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हुए।

0: आइए वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सिंगापुर ब्रेक से पहले वाले इंटरेस्टिंग किस्से को पूरा कर लेते हैं। जब सबने जंजीर करने से मना कर दिया, मतलब सबने, धर्मेंद्र साहब ने, राजकुमार साहब ने और देव साहब ने, तो प्राण साहब ने अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया मेहरा साहब को और कहा कि तुम बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखो, उसमें जो एक्टर है ना उसका काम मुझे अच्छा लगा और एक्शन भी अच्छा करता है, तो तुम एक बार देख लो, हो सकता है तुम्हें जच जाए। तो जब प्रकाश मेहरा साहब ने वो फिल्म देखी तो उन्हें अपनी फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन में मिल गया और उन्होंने अमिताभ को साइन कर लिया। और जैसा कि मुमताज को फीमेल लीड में कास्ट किया गया था पहले, उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। जैसे ही अमिताभ बच्चन फाइनल हुए, मुमताज यानी हीरोइन गायब। अब साहब, और जानते हैं क्यों गायब हो गई, क्योंकि उन्हें पता लगा कि एक लंबा सा पतला सा आदमी मेरा हीरो बनकर इस फिल्म में काम करने वाला है। उन्हें ये बात जची नहीं और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। और दूसरी बात ये थी कि अमिताभ बच्चन साहब की इससे पहले बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी और वो एक हिट हीरोइन थी, वो फ्लॉप हीरो के साथ काम नहीं करना चाहती थी। तो मुमताज ने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, फिल्म छोड़ दी। फिर बाद में अमिताभ ने अपनी दोस्त जया भादुड़ी को ये सारी बात बताई। ये सब सुनकर जया इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई। लेकिन सिंगापुर जब फिल्म रिलीज हुई तो जिसने फिल्म को करने से मना कर दिया था, सबने कहा काश ये फिल्म मैं कर लेता। उस साल की ब्लॉकबस्टर रही है फिल्म, सलीम जावेद का स्क्रीन प्ले और मेहरा साहब का गजब का डायरेक्शन। फिल्म इंडस्ट्री को मिला एंग्री यंग मैन।
1: खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
0: और जैसा कि मैंने कहा था कि म्यूजिक तो कल्याण जी आनंद जी का ही होना था, प्रकाश मेहरा साहब की फिल्मों में तो उन्हीं का था। तो प्राण साहब पर फिल्माया हुआ एक गाना तो दोस्ती के लिए जबरदस्त हिट है। आज भी हर फ्रेंडशिप डे पर इसे गुनगुनाया भी जाता है और सुनाया भी जाता है। कौन सा? अरे भाई ये।

0: की।
1: बातों के साथ साथ अगर गाने भी सुनते रहें तो शो में और भी मजा आ जाएगा। नहीं तो फिलहाल सुनिए ये गाने, लौट कर आऊंगा प्रकाश मेहरा साहब की फिल्मों और उनकी जिंदगी के कुछ और किस्सों के साथ। तब तक आप सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, इंतजार कीजिएगा समर का।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste bahan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।

वेलकम बैक सिंगापुर, प्रकाश मेरा स्पेशल शो आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर के साथ रेडियो मस्ती पर। जिंदगी में किसी भी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, आप भी मानते हैं। फर्स्ट स्टेप तो किसी को लेना ही पड़ता है, और अगर मुकाम लंबा हो, मंजिल बहुत दूर हो या बहुत ऊंची हो तो मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी पड़ती है। मेहरा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था उनका, महज 13 रुपए लेकर वो मुंबई आए थे। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाने का काम किया करते थे। फिर चाय बनाने लग गए। इनका एक दोस्त भी बन गया था यहीं मुंबई में। फिर एक दिन दोस्त ने कहा कि यार फिल्मों के सेट पर चलते हैं, वहां अगर कोई चाय बनाने का काम मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो साहब ये मेहरा साहब को बात पसंद आ गई, क्योंकि वो आए तो फिल्मों में काम करने के लिए थे। तो नासिर हुसैन साहब के प्रोडक्शन में स्पॉट बॉय इन्होंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ चाय बनाने लग गए। एक दिन जब किसी ने चाय का ऑर्डर दिया तो मेहरा साहब ने थोड़ा टाइम लगा दिया बनाने में। तो वो मेहरा साहब को ढूंढते हुए और गुस्से में कहा कि इतना टाइम हो गया यार, अभी तक चाय नहीं बनाई। तो उन्होंने देखा कि मेहरा साहब कोने में बैठकर लिख रहे हैं कुछ, और जब उन्होंने पढ़ा जो मेहरा साहब ने लिखा था तो वो उन्हें पसंद आ गया और बोले, ओ मेहरा यार, तू तो अच्छा लिखता है, तो तू चाय क्यों बनाता है? तू आज से चाय नहीं बनाएगा, मेरे साथ काम करेगा। इसके बाद इन्हें 5वां असिस्टेंट बना दिया गया, यानी असिस्टेंट के नीचे असिस्टेंट, इसके नीचे असिस्टेंट, ऐसे 5वें नंबर का असिस्टेंट। वेल, जहां चाय बनाने में रोज वो 1 रुपया कमा रहे थे, अब रोज के 6 रुपए कमाने लग गए। तो इस इंटरेस्टिंग किस्से के बाद अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक में आपको सुनाऊंगा ये जबरदस्त गाने और ये कहानी बढ़ाऊंगा। इस ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स, फिर से रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

रेडियो मंसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। लेजेंड्स फिर से गेम महफिल। प्रकाश मेहरा साहब की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। तो 1973 में जंजीर जैसी हिट फिल्म देने के बाद अगले साल 1974 में प्रकाश मेहरा साहब ने अपनी अगली हिट फिल्म दी जिसका नाम था हाथ की सफाई। ये फिल्म भी सलीम जावेद साहब ने लिखी थी। विनोद खन्ना और रणधीर कपूर के साथ हेमा मालिनी थी इस फिल्म में और विनोद खन्ना साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला इस फिल्म के लिए। अब साहब सलीम जावेद ने लिखी फिल्म तो हिट तो होनी ही थी और हुई भी, और साथ में कल्याण जी आनंद जी का हिट म्यूजिक भी तो था। हर एक गाना कमाल था जिसमें मेरा फेवरेट तो वो है वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं ना रहूं मेरे बिन तू ना रहे। और इसके अलावा एक और भी था बहुत सारे पीने वालों का फेवरेट, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। और ये गाने आज भी सुने जाते हैं। क्या होता है कि एक अच्छा डायरेक्टर न सिर्फ अच्छी स्टोरी के बारे में सोचता है बल्कि म्यूजिक और स्क्रीन प्ले की मतलब ओवरऑल एक अच्छी फिल्म के बारे में सोचता है। तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम भी ऐसे ही प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स में शुमार होता है। अब मैं आपको बता दूं कि कल्याण जी आनंद जी और सलीम जावेद ये भी इनकी फिल्मों को हिट करने के बहुत बड़े कारण रहे हैं। देखिए ना, हाथ की सफाई के बाद अपने एंग्री यंग मैन के साथ इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें इनकी पिछली फिल्म के हीरो भी थे यानी विनोद खन्ना, और फिल्म का नाम आप समझ जाएंगे। मैं बताऊं, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ हेरा फेरी बनाई।

0: उस साल की कॉमेडी फिल्मों में ये सबसे टॉप पर रही फिल्म अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की कॉमिक टाइमिंग कमाल की रही। तो एंग्री यंग मैन के साथ एक कॉमेडियन भी मिल गया अमिताभ बच्चन के रूप में इंडस्ट्री को।
1: अबे लगती है यार साले नशे में क्या, अबे मैं भेजाऊ तेरा दोस्त
2: ईरानी की दुकान में, तू भूल गया था कि मैं अजय हूँ तेरा दोस्त।
1: अबे यार वो तो पिटाई मैंने माल वसूल करने के लिए ड्रामा किया था।
2: बाल में क्या सा ड्रामा, हड्डी पसली एक हो गई
1: क्या? I'm sorry, ज्यादा लग गया क्या? ला मैं
2: अबे हट, अब इससे खराब करेगा।
0: सिंगापुर मेहरा साहब की तीन फिल्में ऐसी हैं जो मेरी बहुत फेवरेट हैं, और जब मैं उन फिल्मों का जिक्र करूंगा तो आप भी कहेंगे अरे वाह ये तो हमारी फेवरेट हैं। लेकिन सिंगापुर इनके बारे में हम एक ब्रेक के बाद जिक्र करें तो कैसा रहे, क्योंकि इतने बेहतरीन गाने यहाँ लाइन अप हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले इन गानों को सुन लेते हैं और उसके बाद इस कहानी को और इन बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहते हैं आप? आइए आइए गानों को आने देते हैं, आप भी आइए वापस इस ब्रेक के बाद।

0: अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर Masti, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सिंगापुर लेजेंड्स फिर से। मैं प्रकाश मेहरा की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। तो मैं मेहरा साहब की उन तीन फिल्मों का जिक्र करने वाला था जो मुझे बहुत पसंद है, और यकीनन आप भी जब नाम सुनेंगे तो आप भी गाएंगे वाह वाह ये तो हमें भी पसंद है। सबसे पहले लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर और शराबी। इनमें मुकद्दर का सिकंदर आई थी सबसे पहले यानी 1978 में, और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और उस दशक की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी ये, बॉबी और शोले के बाद। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हर डायरेक्टर की एक फिल्म ऐसी होती है जिसके नाम से ही वो जाना जाता है, वो फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर प्रकाश मेहरा साहब के लिए। बड़ा बजट, बड़ी कास्ट और कमाल का म्यूजिक, हर एक डायलॉग, हर एक गाना कमाल का। ये पहली फिल्म थी मेहरा साहब की कादर खान साहब ने जो लिखी थी।
1: जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो, सुख में हंसते हो तो दुख में कहकहे लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना, अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता अब चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले, अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस हंस हंस बेटा, हंस और हंस और हंस, कहीं लगा।
0: और टाइटल सॉन्ग तो था ही कमाल का, लेकिन दो गाने बहुत ज्यादा हिट हुए इसमें से, सलाम इश्क मेरी जान और प्यार जिंदगी है। कादर खान साहब के डायलॉग से फिल्म और भी ज्यादा मजेदार हो गई।
2: ये मेरा इलाका है, मार खाने के बाद ये मुझे बदनाम करता कि सिकंदर ने अपने मोहल्ले में बुला के पीट डाला, नहीं इसे तो मैं इसके घर में ही जाके मारूंगा।
0: लव ट्रायंगल फिल्म थी ये जिसका मेहरा साहब ने बखूबी बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, और इस फिल्म में विनोद खन्ना पहले काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जब उन्हें अमिताभ बच्चन के बराबर पैसे दिए गए तब जाकर उन्होंने इस फिल्म में काम किया। तो वो दौर विनोद खन्ना का भी दौर था। तो आइए फिलहाल तो कुछ और गाने सुन लेते हैं मेहरा साहब की फिल्मों से, और इस दौर में उस दौर के गानों के साथ झूम लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। हाँ रेडियो मस्ती पर समर के साथ।
3: हेलो

लेजेंड्स, फिर से मैं आज की आखिरी मुलाकात में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। आज के लेजेंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, लिरिसिस्ट प्रकाश मेहरा साहब हैं, और 70 के डेकेड का बादशाह अगर उन्हें कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हिंदी फिल्मों में अमिताभ के साथ कोई था तो वो था प्रकाश मेहरा। मेहरा साहब के बारे में उनके बेटे कुछ बताते हैं कि 80s में व्हाइट का चलन था, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट और व्हाइट शूज, तो मेहरा साहब ने व्हाइट पहनना शुरू कर दिया। एंड सेट पर भी वो हीरो के साथ रेडी होकर आते थे, उससे पहले नहीं आते थे। मुकद्दर का सिकंदर के बाद उन्होंने लावारिस बनाई, जिसे भी कादर खान साहब ने लिखा था। इस फिल्म में मेहरा साहब ने गाना भी लिखा था जो बहुत पॉपुलर हुआ और अमिताभ बच्चन साहब के सबसे हिट गानों में से एक है वो।

0: फिल्म के बाकी के गाने अनजान साहब ने लिखे थे और क्या कमाल के लिखे थे, जिसमें एक गाना तो खुद बच्चन साहब ने गाया था, अरे मेरे अंगने मैं तुम्हारा क्या काम है। और इसके बाद शराबी के बारे में बात जरूर करूंगा मैं। दरअसल इस फिल्म का आइडिया मेहरा साहब को फिल्म लावारिस की शूटिंग के दौरान ही आया था। शिमला में ये शूटिंग कर रहे थे तो जिस होटल में ये रुके थे उस होटल के मालिक के लड़के का नाम विकी था और उसे शराब की बुरी लत थी साहब। और फिर इस स्टोरी से उन्होंने फिल्म शराबी बना डाली जिसमें अमिताभ का नाम विक्की था। फिल्म के डायलॉग्स तो आपने भी सुने होंगे, एक एक डायलॉग बनाज भी औरों का तो पता नहीं, पर मेरी जुबान से तो वाह वाह निकलता है। और खास तौर से मूछे हो तो न थुलाल जी जैसी वरना ना हो पर।
1: भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछे हो तो न थुलाल जी जैसी हो वरना ना।
0: इस फिल्म में एक सीन है जो खुद मेहरा साहब का बड़ा फेवरेट सीन रहा, जब प्राण साहब बच्चन साहब को बोलते हैं कि मुझे मखमल में हीरे जड़ने का शौक है और तुम एक नाचने वाली को मेरे घर की बहू बनाना चाहती हो। इसके बाद अमिताभ अपने रूम में लगे महंगे महंगे गिफ्ट्स जो प्राण साहब उनके लिए लेकर आए थे कभी, उन्हें देखकर जो डायलॉग बोलते हैं वो मेहरा साहब का फेवरेट सीन है, सुनेंगे आप, सुनिए।
2: किसकी इजाजत से यहां आई हो तुम? सुना नहीं मेरे बाप ने भी क्या कहा? तुम इस घर पे एक दान, एक दबाव। मैं राज साहब अमरनाथ कपूर का इकलौता बेटा, जिन्हें मखमल पर हीरे चढ़ने का शौक है, ताज के पेवल्स नहीं।
0: इसके अलावा इस फिल्म के शुरू में गाना आता है जहां चार यार मिल जाएं। इस सीन में जो इम्पाला कार दिखाई गई है वो मेहरा साहब की खुद की थी, एंड इसी गाड़ी की डिक्की में जो बार दिखाया गया है वो रियल है, यानी मेहरा साहब अपनी गाड़ी में एक बार हमेशा लेकर चलते थे। वेल, मेहरा साहब की फिल्मों की बातें बहुत सारी हैं लेकिन हमारे पास अभी वक्त बहुत कम है, तो आज के शो में बस इतना ही। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कुछ वादे करते जाइए, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल, किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा, मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूँ यहीं पर, मिलूंगा भी यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी है?

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh, man.

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर तुम पे।
0: इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेले है।
2: जोश में रहो।
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh May.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया, बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और

देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे।

सेक्स है, एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज, 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

Jay Kumar. Let's take a selfie now. Selfie now.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan.
0: Raat akeli hai to kya, hum to

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: I experienced it too.

मैं क्या काका जी, तुसी इंडिया दी हो।

0: खूबियाँ बताएंगे
1: वो बुल्लू बुल्ले
0: जाएंगे
1: ले जाएंगे
0: ले जाएंगे ले जाएंगे
1: ले जाएंगे।
0: सर पे खड़े हैं कल्याण कर दो
1: कल्याण कर दो
2: काम कोई एक तो महान कर दो
1: महान कर दो।
0: खर्चा दहेज का भी बच जाएगा लगे हाथों कन्या का दान कर दो
1: दान कर दो।
0: जाएंगे।

साथ शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

अपनी पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

अब ये प्यार नहीं तो और क्या है, है ना? कि हर मंडे को सुबह सुबह हम पहुंच जाते हैं आपके पास। मतलब पिछले मंडे मैं नहीं आई, लेकिन फिर भी शो तो चल ही रहा था ना। सो वेल ऑब्वियसली द शो मस्ट गो ऑन। गुड मॉर्निंग। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7। जी बिल्कुल, मॉर्निंग शो है और रेणुका आ चुकी है। जी हाँ, पिछले हफ्ते के लिए थोड़ी सी माफी जरूर, मतलब क्षमा याचना मांगना चाहूंगी मैं, लेकिन क्या करें ना, कभी कभी वीकेंड एक डेज से भी ज्यादा ऐसा हो जाता है कि लगता है ना हो पाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द लास्ट डे ऑफ ऑगस्ट। ओ माई गॉड, मतलब कि अब रह गए हैं साल के सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और खत्म हो जाएगा 2026। अब हर बार की तरह मैं अकेले में भी यही कहूंगी कि इस साल का पता ही नहीं लगा। द सेम वे जैसे अंतरा और मैं या कोई और जॉक भी आकर यही बोलता है कि पता ही नहीं लगा। आप लोगों को पता लगा कि नहीं लगा इस साल का, बताइएगा जरूर मुझे। एम आई दी ओनली वन फीलिंग दैट इट्स जस्ट स्लिपिंग बाय? Because there's loads of news, हमेशा की तरह आपके लिए बिल्कुल सुर्खियों पर रखते हुए सारी की सारी खबर लेकर आ चुकी हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज द मॉर्निंग शो, दिस इज रेणुका विद यू, और हमेशा की तरह शुरुआत भी करेंगे एक इंस्पायरिंग से कोट के साथ। उठ जाइए, द म्यूजिक इज गोइंग टू मेक श्योर आपको एनर्जाइज करे। और आज का मेरा पर्सनल प्रेफर्ड कोट कुछ ऐसा है कि Today is a clean page. Do not let yesterday write all of it. मतलब

हर सुबह आपको देती है द पावर टू स्टार्ट फ्रेश। तो पिछली मिस्टेक्स और चिंताओं को भाड़ में जाने दीजिए एंड डोंट लेट देम डिसाइड आज कैसा होगा, राइट? तो चलिए भूल जाइए, अगर किसी लड़ाई बड़ाई हुई है घर के अंदर तो उनको जरा जाकर स्माइल मारिए और चाय शाय पीजिए, जस्ट सिप थ्रू एंड मुझसे बात कीजिए 9151896। गुड मॉर्निंग, दिस इज रेणुका विद यू एंड दिस इज रेडियो मस्ती 24/7।

बातों की शुरुआत न्यूज की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खास खबर से। जी हाँ, तेवसेक और साथ ही साथ में सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7। थेमासेक जो है मेजर शेयर होल्डर सिंगापुर एयरलाइंस का, जी हाँ, इसी वीकेंड पर उन्होंने बैक किया है द एयरलाइंस इन्वेस्टमेंट इन एयर इंडिया, जब स्क्रूटनी बढ़ती चली जा रही है ओवर इट्स स्टेक इन द लॉस मेकिंग इंडियन कैरियर। एयर इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है अबाउट 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फ्रेश इक्विटी फ्रॉम ओनर्स टाटा सन्स एंड एसआईए, और ये रिपोर्ट किया था पिछले हफ्ते न्यूज में हर जगह। सिंगापुर एयरलाइंस जो कि ओन करता है 25.1% ऑफ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइंस विद द रेस्ट विच इज ओन्ड बाय टाटा। News of this funding request, उसकी वजह से prompt किया Mr. Kenneth Tiong, जो है lawmaker from Singapore's opposition workers party, to urge that Temasek's funds should not be used to shore up Air India. और Singapore के Business Times में एक commentary भी आई arguing that Singapore Airlines could not realistically exit its Air India stake with Tata the only plausible buyer. क्वेश्चन किया गया कि 25.1% होल्डिंग जो है विच इज ऑफर्ड बियॉन्ड अ बोर्ड सीट एंड अ शेयर ऑफ द लॉसेस, दे सेड व्हाइल्स दैट द स्ट्रेटेजिक लॉस ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्टिल हेल्ड। हाल ही में बात कुछ ऐसी हो रही है कि तेमासेक के पोर्टफोलियो के डेवलपमेंट की बात चल रही है, और तेमासेक कुछ इस तरह से व्यू कर रहा है सिंगापुर एयरलाइंस का डिसीजन टू इन्वेस्ट इन एयर इंडिया फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन साथ ही साथ में तेमासेक इज सपोर्टिव ऑफ इट। इस चिट्ठी में लिखा गया है दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एयर इंडिया इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स मल्टी ईयर ऑपरेशनल एंड इंटीग्रेशन चैलेंजेस विद आउटकम्स शेप्ड बाय इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि एयर स्पेस डिस्रप्शंस या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या फिर फ्यूल प्राइस वोलेटिलिटी। अब इस समय देखने की बात यह है कि सवाल का जवाब नहीं मिला है कि क्या तेमासेक सपोर्ट करेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय सिंगापुर एयरलाइंस टू एयर इंडिया या नहीं करेगा। खैर, वो खबर तो हमें मिली जाएगी और हम आपको भी दे देंगे। फिलहाल के लिए धूम मचाने का टाइम आ रहा है क्योंकि आपको उठाने का टाइम है। तोड़ जाइए और बस हमारे साथ जुड़ जाइए। And do remember, our app name has changed to Masti Media 24/7. लेकिन हाँ, Masti Media 24/7 के अंदर घुसते ही आप देखेंगे Radio Masti 24/7 and Masti API हमेशा की तरह हम आपके। Good morning.

मैं कैसे बना? ऐसा नहीं चलेगा, वो अभी तुम्हें आया है। हाँ? वो भाई लोग को फिर से करने को क्या बोलते हैं?

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: और इस समय एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर को हिला के रख दिया है। जी हाँ, बात करने वाली हूँ मैं नेपाल टिबेट के फ्लड वाटर्स के बारे में। गुड मॉर्निंग, दिस इज रेणुका विद यू और ये है मॉर्निंग शो।
2: सीरियस हेडलाइंस।
1: तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेपाल ने कल ही के दिन में वॉर्न किया है ऑफ राइजिंग फ्लड वाटर्स एंड अर्ज द रेस्क्यू टीम्स टू एक्सरसाइज कॉशन। एफर्ट्स चल रहे हैं टू रिट्रीव द विक्टिम्स फ्रॉम एरियाज डेवेस्टेटेड बाय अ डेडली सुनामी लाइक फॉल वॉल ऑफ वाटर एंड डेब्री। और इस समय आज का दिन है छठा दिन। बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो फ्लड फ्लो है इन द भोटेकोशी रिवर इन रसुवा, इट हैज इंक्रीज्ड फर्दर। ऐसा कहा कल ही के दिन में नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। और साथ ही साथ में ये भी कहा कि एक वार्निंग जारी करी जा रही है, सभी के सभी पर्सनल जो एंगेज्ड हैं इन रेस्क्यू सर्च एंड रिलीफ ऑपरेशंस, दोज इन रिवर साइड एरियाज एंड एवरीवन एल्स इन अफेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग रसुवा, नुवाकोट, धडिंग एंड चितवन आर रिक्वेस्टेड टू एक्सरसाइज कॉशन। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यही कहा कि पिछले हफ्ते जो वेंसडे मॉर्निंग को हुआ ऑन द चाइना नेपाल बॉर्डर, इट वॉज कॉज्ड बाय अ ग्लेशियल कोलैप्स sending a wall of water and debris downstream. Figures from Nepal and China put the total death toll at 750 kal ke din, aur ye numbers badhte chale ja rahe hain with 3044 people missing. Some of the dead were possibly swept downstream as far away as India. Chinese media ne saath hi mein confirm kiya ki 16 logon ki maut hui hai Tibet mein. Of the 546 people missing, 261 were foreign nationals. Is tarah ka ki khabar bhi aayi hai, including 104 from Nepal, 49 from India, 33 from Latvia and 18 from the United States. ये डिजास्टर जो कि चाइना नेपाल बॉर्डर में पिछले हफ्ते वेंसडे को सुबह शुरू हुआ, was caused by a glacial collapse sending a wall of water and debris downstream. और हमने और आपने बहुत से वीडियोस तो देखे हैं, नेपाली आर्मी बिल्कुल लगी हुई है एक टनल में से लोगों को निकालने में, और सक्सेसफुली बहुत से लोगों को निकाला भी गया है, लेकिन फिलहाल बहुत से लोग ट्रैप्ड हैं डेब्री के नीचे बहुत जगह पे। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि आज हमारे प्रेयर्स इन सब की तरफ हैं। हमारी जो एक जहन में एक बहुत चिंता है वो ये कि जितने भी परिवारों पर इम्पैक्ट हुआ है, जितने भी लोगों पर इम्पैक्ट हुआ है, वो इससे उभर पाए। और वाकई मन कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए और ये जो मौत की संख्या है ये बिल्कुल और ना बढ़े। इसी होप के साथ में बढ़ते आगे। रेडियो मस्ती 24/7 पर ये है द मॉर्निंग शो।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: बढ़ते हैं आगे रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, चल रहा है द मॉर्निंग शो. मॉर्निंग शो में सारे बॉलीवुड की खबर इस घंटे की. और वो क्या खबर है? वेल, चलिए बताते हैं. कोर्ट केसेस की बात कर लेते हैं.
3: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज Views and a pinch. Musty.
2: So, Bollywood actor Chandrachur Singh, जी हाँ, उन्होंने लॉन्च किया है FIR अपनी आंटी गायत्री देवी के खिलाफ. और साथ ही में दो कजन्स और चार और लोग alleging कि उनके जो grandfather की will है, it was forged to deprive his father of the inheritance. बात कर रहे हैं चंद्रचूर सिंह एक्टर की. जी हाँ, उनके कंप्लेन जो कि फाइल किया गया रोरावर पुलिस स्टेशन इसी वीकेंड पर, चंद्रचूर ने अलेज किया दैट द सिग्नेचर ऑफ हिज फादर ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह, अ प्रोमिनेंट लैंड ओनर ऑफ जलालपुर विलेज नियर अलीगढ़, उसको फोर्ज किया गया था 1997 में व्हेन ही वाज क्रिटिकली इल एंड अलेजेडली नॉट इन अ पोजीशन टू साइन डॉक्यूमेंट्स. चंद्रचूर सिंह ने अलेज किया है कि उनके जो अंकल हैं गंगा सिंह और बाकी फैमिली मेंबर्स, उन्होंने फोर्ज किया सिग्नेचर ऑन द विल डिप्राइविंग हिज फादर लेट कैप्टन बलदेव सिंह ऑफ हिज इनहेरिटेंस राइट्स. और इसी कंप्लेन में कैप्टन बलदेव सिंह, जो कि प्रेजेंट नहीं है अलीगढ़ में व्हेन द विल वाज एलिजिबली एग्जीक्यूटेड, नहीं थे उस समय, उनके दूसरे अंकल पुण्य प्रताप सिंह, वो तो उनकी मौत हो चुकी थी बिफोर हरेंद्र पाल सिंह. और ये जो हमारे चंद्रचूर सिंह हैं, उन्होंने ये कहा दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द प्राइम प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड अंडर द डिस्प्यूटेड विल वॉज सब्सिक्वेंटली सोल्ड ओवर द ईयर्स. अब रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, इस समय 1997 से लेके 2026, जी हाँ, ऑलमोस्ट 30 इयर्स लेटर, चंद्रचूर सिंह जो है, उन्होंने ये कहा कि उनके पास सारा एविडेंस है और वो अपने इस सारी एलिगेशंस को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं. ही ऑल्सो सेड दैट आफ्टर लॉजिंग द FIR ही रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट पुलिस के साथ में. और ये डिस्प्यूट कब, ये सारा टंटा कब शुरू हुआ, जब गायत्री देवी ने रिजेक्ट किया द एलिगेशंस एज फॉल्स और अक्यूज किया चंद्रचूर को ऑफ ट्राइंग टू फॉल्सली इम्प्लीकेट हर. शी हैड ऑल्सो मेंटेन्ड दैट द विल वॉज जेन्युइन. कितना टंटा है भैया हर परिवार में 20-30 साल बाद भी. चलो हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आपको दे दी मैंने खबर कि लोगों के घरों में क्या कलेश हो रहा है. और मिलती हूँ आपको अगले घंटे. ठीक है, दिस इज द मॉर्निंग शो. लेट्स गेट डाउन टू सम मोर सीरियस न्यूज एंड आई विल सी यू अक्रॉस द आवर. गुड मॉर्निंग.

0: your passport to the world every Monday morning. From global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: आइए आइए, हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है द मॉर्निंग शो. मॉर्निंग शो जहां पर आपको दुनिया भर की खबरें, जी हाँ बिल्कुल, एट योर फिंगर टिप्स लेकर देते हैं हम मस्ती मीडिया नेटवर्क से.
0: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच.
3: यार ये पिंच ऑफ मस्ती तो खैर इस समय क्या ही हम बताएंगे इस खबर में, लेकिन हाँ चलती रहेगी पूरे तीन घंटे आपके साथ मेरे शो पर. 1200 न्यू फ्लैट्स, जी हाँ, अबाउट 1200 न्यू फ्लैट्स विद शॉर्टर वेटिंग टाइम्स, बिल्कुल तैयार है लॉन्च होने के लिए. अक्रॉस टू बिल टू ऑर्डर द BTO प्रोजेक्ट्स इन सिनमिंग एंड थोपायो, नेशनल डेवलपमेंट मिनिस्टर ची होंग थाट ने कहा इसी वीकेंड पर. द टू डेवलपमेंट्स विल हैव वेट टाइम्स ऑफ लेस देन 3 years, ही सेड इन अ फेसबुक पोस्ट, एडिंग कि जो लॉन्च डेट्स हैं, एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम्स हैं, दे विल बी रिलीज्ड जब तैयार हो जाएंगी. तो दिस इज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू सस्टेन अ रोबस्ट हाउसिंग सप्लाई व्हाइल इंजेक्टिंग new housing into existing towns and rejuvenating these areas. Mr. Chi ne point out kiya previously announced plans for 1600 naye ghar across 3 projects in the Lakeview and Chunfu area. The first of these was launched in June 2026 BTO sales exercise. 10,000 se bhi zyada public and private homes are also planned across Topayo West and Mount Pleasant over the next decade. Aur saath hi mein ye sare naye ghar, they are going to be providing more housing options for home buyers, including those who wish to live closer to their parents or loved ones. ऐसा कहा मिस्टर ची ने. अब shorter waiting time का मतलब है कि सारा का सारा जो HDB है वो effort मार रहे हैं to reduce the waiting time for BTO flats. मतलब कि ऐसे flats construction typically well underway होता है by the time flat applicants book a unit. HDB has already said that previously. तो भाई देखने की बात ये है कि temporary inconvenience जरूर है, लेकिन फिर भी जल्दी से आपको आपका घर मिल जाता है तो इससे बेहतरीन क्या बात हो सकती है. क्या गाना है चेन्नई एक्सप्रेस का, ये वाला सुनते साथ साथ आती हूँ वापस विद सम मोर न्यूज़. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती 24/7.
4: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनी टाइम एनीवेयर.